इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग। आपले खानदेश, आपली मानसं।
1: कृषी संदेश।

0: एपिसोड 108। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई दुख आता है या कोई संकट आता है, तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम उस संकट से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, गलत रास्तों पर जाने लगते हैं या पूरी तरह टूट कर हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी लोहार की दुकान पर तपते हुए लोहे को देखा है? उस लोहे पर एक तरफ से नीचे भारी निहाई का सहारा होता है और ऊपर से लोहार का भारी हथौड़ा उस पर लगातार भीषण चोट करता है। उन चोटों के बीच में रहकर ही वह लोहा एक उपयोगी और मूल्यवान औजार में बदलता है। कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि संसार के दुखों और थपेड़ों के बीच अपनी आत्मा को मजबूत और अड़िग कैसे रखना है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम धैर्यवान सूत्र। कबीर केवल राम की तू जीनी छांडे ओट, घन अहरणी बीची लोह जू, घनी सहे सिर चोट। कबीर केवल राम की तू जीनी छांडे ओट, कबीर केवल राम की तू जिनी छांडे ओट, घन हरण बीच लोह जू, घन सह गिरे चोट रे साधो, घन सह चीरे ओट। श्रोताओं, कबीर साहब हमें एक दृढ़ निर्देश देते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम की तू जिनी छांडे ओट। हे साधक, तू केवल और केवल उस परमात्मा की, उस भीतरी आत्म तत्व की ओट यानी शरण को कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों न हो जाए। संसार के झूठे सहारों के पीछे मत भागना। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे साधना के गहरे विज्ञान को एक रूपक के रूप में समझाते हैं। घन अहरणी बिची लोह जू, घन का अर्थ है लोहार का भारी हथौड़ा और अहरणी का अर्थ है मजबूत निहाई जिस पर लोहा रखा जाता है। कबीर कहते हैं कि जैसे हथौड़ा और निहाई के बिची यानी बीच में पड़ा हुआ लोहा घनी सहे सिर चोट, अपने सिर पर एक के बाद एक सैकड़ों चोटें सहता है, लेकिन फिर भी वह वहाँ से भागता नहीं। वह उस निहाई का सहारा नहीं छोड़ता। अंत में वही लोहा एक सुंदर और पक्के शस्त्र या औजार का रूप ले लेता है। यह दोहा तितिक्षा और शरणागति का महासूत्र है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ सुख के साथ दुख की हथौड़ी चलेगी ही, मान के साथ अपमान का धन बरसेगा ही। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव हैं, वे इन चोटों से घबरा कर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक हैं, वह जानता है कि ये सांसारिक दुख और कठिनाइयाँ उसकी आत्मा को तपाकर शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। राम की ओट वह मजबूत निहाई हैं जिस पर टिक कर जीव संसार की हर चोट को सहने की शक्ति पा लेता है। जब तक आप उसी भीतरी केंद्र में जुड़े हुए हैं, संसार की कोई भी चोट आपकी चेतना को नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि वह आपको और ज़्यादा जागृत और पक्का बना देती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने संकटों और अपनी घबराहट को देखिए। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए, तो बेचैन होने के बजाय खुद को उस लोहार की दुकान में तपे हुए लोहे की तरह देखिए। सोचिए कि क्या हम भी परिस्थिति से डर कर भाग रहे हैं, या राम की ओट में रहकर मजबूती से खड़े हैं। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस अटूट विश्वास को जगाने की। परिस्थितियों को दोष देना बंद कीजिए। उस निराकार परमात्मा की शरण में खुद को ऐसा सौंप दीजिए कि संसार का कोई भी घन यानी हथौड़ा आपकी भीतरी शांति को भंग ना कर सके। इस बात का गहरा एहसास रखिए कि जो चेतना परमात्मा की ओट में सुरक्षित है वह हर चोट को सहकर अमर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM always half touching।
2: अरे वो तूने ज्ञान शास्त्र सुकमा गुरु फटेल भैर थई वरलावरे मौज मजा मस्ती करारे लावनार तू भोकायत गया बेफाम जग वर्मा अनन्या उकायलीसनी मौज मस्ती करी जड़ वादले कवटेशनी तू आखो बोली पड़ना जलमपाई मरालों ना परवास खरा शे आखो तू आ सभी बोलना हाय देव ना दान शे तुले अंतुना जिंदगानीले धरमनी नावे ठेवात अन करम को बाणमा तुले त्यानी तानी ली गयात तू देऊन दान म्हण जिंदगी जिंदगीना करा उदो उदो रोजना जिंदगीना आनंद गुंता खरी जिंदगीले तू बनाड उत्थय बेछूट आन त्यामही संस्कार भी जोयजेल म्हणशीन तुले गरज पडणी देव ध्यानी पन्नी खरा कोटाना निवाडा करा गुंता संस्कृतीना शेवटला टोक लागे तुले परवास करानी जाई विच्छा हाऊ खल्ली शोध वाटत सोपा मात्र राहस अवघड त्या शोधले अन संशोधनले शोधाले जावते आपलाच अंग हुशारीनी थकातक तरी बी कोठे सापडस ते ना मुई कायम ना समाधान अन सुखन बठी दुनिया मा दिखाले लागस अंधारामा थोडासा कुजीड अन त्यानं बोट पकडी मोरे खरखाले जाओ ते अंधारामा लांबा ना भेव तो उजिडले दराना इचार अन आशा मन मही बठस आपसुक खरा कोटाना मुई लागे गोल गोल फिरतस कितलाक मानशे अंधाराना गुफा मजार शानावातना उजेडशे असा भरम वैशिनी बाहेर बी इंगता येत नाही इथला अवघड अन मग आटकतस करम को बाणना अंधार गुफामा सडत राहतस मानशेसना कितलाक टोय आखो कितल्याक पिढ्या पिचत पडतस आज्ञांमा बिनकामना वै जातस ज्ञान बिगर त्यांना पायरे जलमत नाही माणुसकीनं नव भिजवाड चांगला संस्कार मातीन मौर्य येवाले जोजे संस्कृती तिले बोवडाले नको हलकाबारीनी जातपातनी बाधा आणि त्यामधून उभा राहू असा माणूस की संस्कार असना उजीडच उजीड बरसत राहू सूर्याना मायक आणि त्यांकडे दखी दखी जिमीन वरला माणशे आणि त्यासण्या पिढ्या त्यानं चलीन तर भये उजई इंगोत आणि तो उजाय पुंस्का बट्टा दूर उदयत राहो खतम हो आणि ती अत्याचार पाप गंद्या गोष्टी कलंक उजिडना संस्कार मजार असा उजीड सोदूत असा उजीड तपासूत असा उजीड दखूत आणि असा उजीड अनभवसूत असा उजीड अंतकरण मा जिरासूत त्या उजीडले आखो नवाई थाईन हाऊ उभारा फुटी गतीना परगतीना चला गड्यासो असा उजीड शोधूत ते अरे चला गड्यासो असा उजीड शोधूत ते देखा भाऊ बहिणी सोन हनुमाना दोस्त सोन हाऊ बुद्ध ज्ञानना झरा असाच वाहत राही तीन भागेस माई भागेले अहो पहिल्या भागात तुम्हाला सामने महा मांडा आणि त्या मा जलम आणि जिंदगी यान बारामातली चर्चा तुम्ही ऐकी ती बी कविता मातीन आणि या नामोरे तुम्ही जे ऐकसात ऐकशात त्यामुळे तुमले आनंदच होई अहो मला विश्वास आहे।
3: नमस्कार मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: गीताई अध्याय पहिला। अर्जुनाचा विषाद किंवा अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र म्हणाला, त्या पवित्र कुरुक्षेत्री पांडूचे आणि आमुचे युद्धार्थ जमले तेव्हा वर्तले काय संजया। संजय म्हणाला, पाहिली पांडवी सेना सज्ज दुर्योधने तिथे मग गेला गुरु पाशी त्यास हे वाक्य बोलिला गुरुजी तुमचा शिष्य शाहना द्रुपदात्मज विशाळ रचिले त्याने पहा पांडव सैन्य हे ह्यात शूर धनुर्धारी युद्धी भीमार्जुना सम महारथी तो द्रुपद विराट नृप सात्यकी धृष्टकेतु तसा शूर काश्यतो चेकिता नही पुरुजीत कुंती भोजीय आणि शैब्य नरोत्तम उत्तमौजा हितो वीर युधा मन्यु हि विक्रमी सौभद्र आणि ते पुत्र द्रौपदीचे महारथी आता जे आमुच्यातील सैन्याचे मुख्य नायक सांगतो जाणण्यासाठी घ्यावे लक्षात आपण स्वतः आपण हे भीष्म यशस्वी कृप कर्ण तो अश्वत्थामा सौमदत्ती जयद्रथ विकर्ण ही अनेक दुसरे वीर माझ्यासाठी मरावया सजले सर्व शस्त्रांनी झुंजणारे प्रवीण जे अफाट आमुचे सैन्य भीष्मांनी रक्षिले असे मोजके पांडवांचे हे भीमाने रक्षिले असे राहुणी आपुल्या स्थानी जेथे ज्यास नियोजिले चहू कडूनी भीष्मास रक्षाल सगळे जन हर्षवीतची तो त्यास सिंहनाद करुणिया प्रतापी वृद्ध भीष्मांनी मोठ्याने शंख फुंकिला तत्क्षणी शंखभिर्यादी रणवाद्ये विचित्रची एकत्र झडली तेव्हा झाला शब्द भयंकर इकडे शुभ्र घोड्यांच्या मोठ्या भव्य रथातुनी माधवे अर्जुने दिव्य फुंकिले शंख आपुले पांचजन्य ऋषी केशे देवदत्त धनंजये पौंड्रतो फुंकिला भीमे महाशंख महाबळे तेव्हा अनंत विजय धर्मराज युधिष्ठिरे नकुळे सहदेवे ही सुघोष मणिपुष्पक मग काश्य धनुर्धारी शिखंडी ही महारथी विराट आणि सेनानी तसा अजित सात्यकी राजा द्रुपद सौभद्र द्रौपदीचे ही पुत्र ते सर्वांनी फुंकिले शंख आपुले वेग वेगळे त्या घोषे कौरवांची तो हृदयेची विदारली भरूनी भूमि आकाश गाजला तो भयंकर मग नीट उभे सारे पुन्हा कौरव राहिले चालनार पुढे शस्त्रे इतुक्यात कपिध्वज हाती धनुष्य घेऊनी बोले कृष्णास वाक्य हे अर्जुन म्हणाला दोन्ही सैन्यांमध्ये कृष्णा माझा रथ उभा करी म्हणजे कोण पाही न राखिती युद्ध कामना आज ह्या रणक संग्रामी कोणाशी झुंजने मज झुंजते वीरते सारे घेतो पाहुनी येथ मी युद्धी त्या हतबुद्धीचे जे करू पाहती प्रिय। संजय म्हणाला अर्जुनाचे असे वाक्य कृष्णे ऐकुनी शीघ्रची दोन्ही सैन्यांमध्ये केला उभा उत्तम तो रथ मग लक्ष्मी नीट भीष्म द्रोण नृपांस तो म्हणे हे जमले पार्था पहा कौरव सर्वतु तेथ अर्जुन तो पाहे उभे सारे व्यवस्थित आजे काके तसे मामे सासरे सोयरे सखे गुरु

वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्ति।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जयघोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जन मन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ

कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास आनंद मठ प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वंदे मातरम जैसे आजादी का बीज मंत्र बन चुका था। और आज भी वंदे मातरम को न केवल हमारा राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: सरकार आपको बार बार बता चुकी है कि कोविड 19 पीरियड में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। आप जागरूक बनिए, सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन कीजिए। कोरोना जितनी घातक बीमारी है, उतना ही सरल इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब है 13 जून। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं। निवाड़ी से सूर्यकांत त्रिपाठी, नासिक महाराष्ट्र से राजा लोधी, बालाघाट से दुर्गा देवी सतीजा और भोपाल से घनश्याम तिवारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। सवाल एक बार फिर सुन ले, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-908-908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: आप सुन रहे हो रेडियो मन भावन 90.8 FM, अलवेज हार्ट टचिंग। आप लखानदेश, आप ली मानसर।
1: कृषि संदेश।

0: एपिसोड 108। नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जीवन में जब भी कोई बड़ी मुसीबत आती है, कोई दुख आता है या कोई संकट आता है तो हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। हमारा भरोसा डगमगाने लगता है। हम सोचने लगते हैं कि ईश्वर हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं। हम उस संकट से बचने के लिए शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, गलत रास्तों पर जाने लगते हैं या पूरी तरह टूट कर हार मान लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी किसी लोहार की दुकान पर तपते हुए लोहे को देखा है? उस लोहे पर एक तरफ से नीचे भारी निहाई का सहारा होता है और ऊपर से लोहार का भारी हथौड़ा उस पर लगातार भीषण चोट करता है। उन चोटों के बीच में रहकर ही वह लोहा एक उपयोगी और मूल्यवान औजार में बदलता है। कबीर साहब आज हमें समझा रहे हैं कि संसार के दुखों और थपेड़ों के बीच अपनी आत्मा को मजबूत और अड़िग कैसे रखना है। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह परम धैर्यवान सूत्र। कबीर, केवल राम की तू जीनी छांडे ओट, घन अहरणी बीची लोह जू, घनी सहे सिर चोट। कबीर, केवल राम की तू जीनी छांडे ओट, कबीर केवल राम की तू जिनी छांडे ओ, घन हरण बीच लोह जू, घन सहे गिरे चोट रे साधो, घन सहे चीरे ओट। श्रोताओं, कबीर साहब हमें एक दृढ़ निर्देश देते हुए कहते हैं, कबीर केवल राम की तू जिनी छांडे ओट। हे साधक, तू केवल और केवल उस परमात्मा की उस भीतरी आत्म तत्व की ओट यानी शरण को कभी मत छोड़ना, चाहे परिस्थिति कितने भी विपरीत क्यों न हो जाए। संसार के झूठे सहारों के पीछे मत भागना। वे ऐसा क्यों कह रहे हैं? अगली पंक्ति में वे साधना के गहरे विज्ञान को एक रूपक के रूप में समझाते हैं। घन अहरणी बिची लोह जू, घन का अर्थ है लोहार का भारी हथौड़ा और अहरणी का अर्थ है मजबूत निहाई जिस पर लोहा रखा जाता है। कबीर कहते हैं कि जैसे हथौड़ा और निहाई के बिची यानी बीच में पड़ा हुआ लोहा घनी सहे सीत चोट, अपने सिर पर एक के बाद एक सैकड़ों चोटें सहता है लेकिन फिर भी वह वहां से भागता नहीं। वह उस निहाई का सहारा नहीं छोड़ता। अंत में वही लोहा एक सुंदर और पक्के शस्त्र या औजार का रूप ले लेता है। यह दोहा तितिक्षा और शरणागति का महासूत्र है। यह संसार द्वंद्वों से भरा है। यहाँ सुख के साथ दुख की हथौड़ी चलेगी ही, मान के साथ अपमान का धन बरसेगा ही। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि जो अज्ञानी जीव हैं वे इन चोटों से घबरा कर परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, लेकिन जो सच्चा साधक हैं वह जानता है कि ये सांसारिक दुख और कठिनाइयाँ उसकी आत्मा को तपाकर शुद्ध करने की एक प्रक्रिया है। राम की ओट वह मजबूत निहाई हैं जिस पर टिक कर जीव संसार की हर चोट को सहने की शक्ति पा लेता है। जब तक आप उसी भीतरी केंद्र में जुड़े हुए हैं, संसार की कोई भी चोट आपकी चेतना को नष्ट नहीं कर सकती, बल्कि वह आपको और ज्यादा जागृत और पक्का बना देती हैं। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा अपने संकटों और अपनी घबराहट को देखिए। जब भी जीवन में कोई परेशानी आए तो बेचैन होने के बजाय खुद को उस लोहार की दुकान में तपे हुए लोहे की तरह देखिए। सोचिए कि क्या हम भी परिस्थिति से डर कर भाग रहे हैं या राम की ओट में रहकर मजबूती से खड़े हैं। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर उस अटूट विश्वास को जगाने की। परिस्थितियों को दोष देना बंद कीजिए। उस निराकार परमात्मा की शरण में खुद को ऐसा सौंप दीजिए कि संसार का कोई भी घन यानी हथौड़ा आपकी भीतरी शांति को भंग ना कर सके। इस बात का गहरा एहसास रखिए कि जो चेतना परमात्मा की ओट में सुरक्षित है वह हर चोट को सहकर अमर हो जाती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मनभावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: रेडियो मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हाफ टचिंग।
2: अरे वो तुन ज्ञान शास्त्र सुकमागुर फटेल भैर थई वरलावरे मौज मजा मस्ती कराले लावणार तू भोकायत घ्या बेफाम जगवर्मा अनन्या उकायलीसनी मौज मस्ती करी जड वादले कवटेशनी तू आखो बोली पडना जलमपाई मरालोंग ना परवास खरं शे आखो तू असा बी बोलना हाय देव न दानशे तुले अंतुना जिनग्यानिले धरमनी नावे ठेवात आणि करम कुबाणमा तुले त्यांनी तानिली घ्यात तू देऊन दान म्हण जिनगी जिनगीना करा उदो उदो रोजना जिनगीना आनंद गुंता खरी जिंदगीले तू बनाड उत्थय बेछूट आणि त्यामही संस्कार बी जोयजेल म्हणशीन तुले गरज पडणी देव ध्यानी पन्नी खरा कोटाना निवाडा करा गुंता संस्कृतीना शेवटला टोक लागे तुले परवास करानी जाई विच्छा हाऊ खल्ली शोध वाटत सोपा मात्र राहस अवघड त्या शोधले आणि संशोधनले शोधाले जावते आपलाच अंग हुशारीनी थकाथक तरी बी कोठे सापडत नाही ना मुई कायम ना समाधान आणि सुखनं बठ्ठी दुनियामा दिखाले लागस अंधारामा थोडासा कुजीड आणि त्यानं बोट पकडी मोरे खरखाले जाओ ते अंधारामा लांबाना भेव तो उजिडले दराना इचार आणि आशा मन मही बठस आपसुक खरा कोटाना मुई लागे गोल गोल फिरतस कितलाक मानशे अंधाराना गुफा मजार शानावातना उजेडशे असा भरम वैशिनी बाहेर बी इंता येत नाही इथला अवघड आणि मग अटकतस करमको भांडणा अंधार गुफामा सडत राहतस माणशेसना कितलाक टोय आखो कितल्याक पिढ्या पिचत पडतस आज्ञांमा बिनकामना वै जातस ज्ञान बिगर त्यांना पायरे जलमत नाही माणुसकीनं नव भिजवाड चांगला संस्कार मातीन मौर्य येवाले जो जे संस्कृती तिले बोवडाले नको हलकाबारीनी जातपातनी बाधा आणि त्यामधून उभा राहू असा माणूस की संस्कारेसना उजीडच उजीड बरसत राहू सूर्याना मायक आणि त्यांकडे दखी दखी जिमीन वरला माणशे आणि त्यासण्या पिढ्या त्यानं चलीन तर भये उजई इंगोत आणि तो उजाय पुंसका बट्टा दूर उधळत राहो खतम हो आणि ती अत्याचार पाप गंद्या गोष्टी कलंक उजिडना संस्कार मजार असा उजीड सोदूत असा उजीड तपासूत असा उजीड दखूत आणि असा उजीड अनुभवसूत असा उजीड अंतकरण मा जिरासूत त्या उजीडले आखो नवाई थाईन हाऊ उभारा फुटी गतीना परगतीना चला गड्यासो असा उजीड शोधूत ते अरे चला गड्यासो असा उजीड शोधूत ते देखा भाऊ बहिणी सोन आणि मना दोस्त सोन हाऊ बुद्ध ज्ञानना झरा असाच वाहत राही तीन भागेस माई भागेले अहो पहिल्या भागात तुम्हाला सामने महा मांडा आणि त्या मा जलम आणि जिंदगी यान बारा मातली चर्चा तुम्ही ऐकी ती बी कविता माथीन आणि या नामोरे तुम्ही जे ऐकसात ऐकशात त्यामुळे तुमले आनंदच होई अहो मला विश्वास आहे।
3: नमस्कार मी आहे पुष्कर श्रोती आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
4: गीताई अध्याय पहिला। अर्जुनाचा विषाद किंवा अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र म्हणाला, त्या पवित्र कुरुक्षेत्री पांडूचे आणि आमुचे युद्धार्थ जमले तेव्हा वर्तले काय संजया। संजय म्हणाला, पाहिली पांडवी सेना सज्ज दुर्योधने तिथे मग गेला गुरु पाशी त्यास हे वाक्य बोलिला गुरुजी तुमचा शिष्य शाहना द्रुपदात्मज विशाळ रचिले त्याने पहा पांडव सैन्य हे ह्यात शूर धनुर्धारी युद्धी भीमार्जुना सम महारथी तो द्रुपद विराट नृप सात्यकी धृष्टकेतु तसा शूर काश्यतो चेकिता नही पुरुजीत कुंती भोजीय आणि शैब्य नरोत्तम उत्तमौजा हितो वीर युधा मन्यु हि विक्रमी सौभद्र आणि ते पुत्र द्रौपदीचे महारथी आता जे आमुच्यातील सैन्याचे मुख्य नायक सांगतो जाणण्यासाठी घ्यावे लक्षात आपण स्वतः आपण हे भीष्म यशस्वी कृप कर्ण तो अश्वत्थामा सौमदत्ती जयद्रथ विकर्ण ही अनेक दुसरे वीर माझ्यासाठी मरावया सजले सर्व शस्त्रांनी झुंजणारे प्रवीण जे अफाट आमुचे सैन्य भीष्मांनी रक्षिले असे मोजके पांडवांचे हे भीमाने रक्षिले असे राहुणी आपुल्या स्थानी जेथे ज्यास नियोजिले चहू कडूनी भीष्मास रक्षाल सगळे जन हर्षवीतची तो त्यास सिंहनाद करुणिया प्रतापी वृद्ध भीष्मांनी मोठ्याने शंख फुंकिला तत्क्षणी शंखभिर्यादी रणवाद्ये विचित्रची एकत्र झडली तेव्हा झाला शब्द भयंकर इकडे शुभ्र घोड्यांच्या मोठ्या भव्य रथातुनी माधवे अर्जुने दिव्य फुंकिले शंख आपुले पांचजन्य ऋषी केशे देवदत्त धनंजये पौंड्रतो फुंकिला भीमे महाशंख महाबळे तेव्हा अनंत विजय धर्मराज युधिष्ठिरे नकुळे सहदेवे ही सुघोष मणिपुष्पक मग काश्य धनुर्धारी शिखंडी ही महारथी विराट आणि सेनानी तसा अजित सात्यकी राजा ध्रुपद सौभद्र द्रौपदीचे ही पुत्र ते सर्वांनी फुंकिले शंख आपुले वेग वेगळे त्या घोषे कौरवांची तो हृदयेची विदारली भरुणी भूमि आकाश गाजला तो भयंकर मग नीट उभे सारे पुन्हा कौरव राहिले चालनार पुढे शस्त्रे इतुक्यात कपिध्वज हाती धनुष्य घेऊनी बोले कृष्णास वाक्य हे अर्जुन म्हणाला दोन्ही सैन्यांमध्ये कृष्णा माझा रथ उभा करी म्हणजे कोण पाही न राखिती युद्ध कामना आज ह्या रणक संग्रामी कोणाशी झुंजने मज झुंजते वीरते सारे घेतो पाहुनी येथ मी युद्धी त्या हतबुद्धीचे जे करू पाहती प्रिय। संजय म्हणाला अर्जुनाचे असे वाक्य कृष्णे ऐकुनी शीघ्रची दोन्ही सैन्यांमध्ये केला उभा उत्तम तो रथ मग लक्ष्मी नीट भीष्म द्रोण नृपांस तो म्हणे हे जमले पार्था पहा कौरव सर्वतु तेथ अर्जुन तो पाहे उभे सारे व्यवस्थित आजे काके तसे मामे सासरे सोयरे सखे गुरु बंधु मुले नातू दोन्ही सैन्यात सारखे असे पाहुनी तो सारे सज्ज बांधव आपुले अत्यंत करुणाग्रस्त विषादे वाक्य बोलिला अर्जुन म्हणाला कृष्णा स्वजन हे सारे युद्धी उत्सुक पाहुनी गात्रीची गळती माझी होतसे तोंड कोरडे शरीरी सुटतो कंप उभे रोमांच राहती गांडीव नटिके हाती सगळी जळते त्वचा न शकेची उभा राहू मन हे भ्रमले जसे कृष्णा मी पाहतो सारी विपरीतची लक्षणे कल्याण न दिसे युद्धी स्वजनास वधुनिया नको जय नको राज्य नको तमजती सुखे राज्य भोगे मिळे काय किंवा काय जगुनिही ज्यांच्या साठी अपेक्षावी राज्य भोग सुखे हिती सजले तेची युद्धास धना प्राणास सोडुनी आजे बाप मुले नातू आमुचे दिसती इथे सासरे मेहुणे मामे संबंधी आणि हे गुरु न मारू इच्छितो ह्यांस मारितील जरी मज विश्व साम्राज्य सोडीन पृथ्वीचा पाडतो किती ह्या कौरवांस मारुणी कायसे आमुचे प्रिय अत्याचारी जरी झाले ह्यांस मारुणी पापची म्हणूनी घात बंधूंचा आम्हा योग्य नवेचितो आम्ही स्वजन मारुनी सुखी भावे कसे बरे लोभाने नासली बुद्धी त्यामुळे हे न पाहती मित्रद्रोही कसे पाप काय दोष कुलक्षयी परी हे पाप टाळावे आम्हा का समजू नये कुलक्षयी महादोष कृष्णा उघड पाहता कुलक्षये लया जाती कुल धर्म सनातन धर्म नाशे कुळी सर्व अधर्म पसरे मग अधर्म माजतो तेव्हा भ्रष्ट होती कुल स्त्रिया स्त्रिया बिघडता कृष्णा घडतो वर्ण संकर संकरे नरका जाय कुलघ्ना सहते कुळ पितरांचा अधपात होतसे श्राद्ध लोपुनी ह्या दोषांनी कुलघ्नांच्या होऊने वर्ण संकर जातीचे बुडती धर्म कुळाचेही सनातन ज्यांनी बुडविले धर्म कुळाचे त्यांस निश्चित नरकी राहणे लागे आलो ऐकत हे असे अरे रे केवडे पाप आम्ही आरंभिले असे लोभे राज्य सुखासाठी मारावे स्वजनास जे त्याहुनी शस्त्र सोडोनी उगाराहीन ते बरे मारोत मग हे युद्धी शस्त्रांनी मज कौरव संजय म्हणाला असे रणात बोलूनी शोका वेगांत अर्जुन धनुष्य बाण टाकूनी रथी बैसुनी राहिला अध्याय पहिला समाप्त
3: नमस्कार मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग
5: ग्राम गीता चिंतन भाग सेचा।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत वतन का राग कार्यक्रम में आज हम स्मरण कर रहे हैं सुप्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी का। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है wataNKARAAG@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन ले, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ जब एक ओर पूरा भारत लड़ाई लड़ रहा था, भारत मां के वीर सपूत जब ब्रिटिश शासन के समक्ष चुनौती बनकर लगातार खड़े हो रहे थे, क्रांति के मार्ग पर चलते हुए हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल रहे थे, तब दूसरी ओर भारत का एक सच्चा सपूत अपनी कलम की ताकत से पूरे देश को एकजुट कर रहा था। उस वीर सपूत का नाम था बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी न सिर्फ एक उपन्यासकार थे, बल्कि वो एक महान कवि, गद्यकार और पत्रकार भी थे, जिन्होंने अपनी रचनाओं से स्वतंत्रता की ऐसी अलख जगाई जिससे पूरा भारत वंदे मातरम के जय घोष से गूंज उठा। हमारा राष्ट्रगीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी की ही रचना है। स्वाधीनता संग्राम के दौरान वंदे मातरम एक मंत्र की तरह पूरे भारत में गूंज उठा था। बलिदान की एक ऐसी भावना जन मन में पैदा हो गई थी कि जाति, धर्म और संप्रदाय की दीवारें टूट गईं। भारतीयता ही हर व्यक्ति का प्रथम परिचय और भारत की आजादी ही सबका पहला लक्ष्य हो गया। सच तो ये है कि उनका लिखा गीत वंदे मातरम स्वाधीनता संग्राम के उस दौर में अंग्रेजों की खिलाफत करने का प्रतीक बन गया था, और देश की आजादी के बाद वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत घोषित हुआ। बंकिम चंद्र चटर्जी ओजस्वी राष्ट्रवादी और साहित्यकार थे। वे आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक माने जाते हैं। बंकिम बाबू ने अपनी कलम के जरिए भारतवासियों के भीतर ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह की चेतना जगाई। बंकिम चंद्र चटर्जी का जन्म 27 जून सन 1838 को उत्तरी 24 परगना के कंथलपाड़ा नैहाटी में एक परंपरागत समृद्ध और कुलीन बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी नौकरी में थे, जो बाद में बंगाल के मेदिनीपुर में उप कलेक्टर बन गए। मेदिनीपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर बंकिम चंद्र चटर्जी ने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला लिया। किताबों से उन्हें अत्यंत प्रेम था तथा खेल कूद में भी उनकी विशेष रुचि थी। बंकिम चंद्र चटर्जी का विवाह मात्र 11 वर्ष की आयु में ही हो गया था, और उनकी पत्नी का निधन कुछ ही वर्षों बाद हो गया। उसके बाद उन्होंने दूसरा विवाह राजलक्ष्मी देवी से किया। बंकिम चंद्र चटर्जी को उसी साल स्नातक की उपाधि प्राप्त हुई जिस साल भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ पहली बार संगठित लड़ाई लड़ी गई थी, साल 1857। इसी साल उन्होंने कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए पास किया। प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि प्राप्त करने वाले वे पहले भारतीय थे। सन 1869 में उन्होंने कानून की डिग्री भी हासिल की। वे न सिर्फ एक साहित्यकार थे, बल्कि एक सरकारी अधिकारी भी थे। उन्होंने अपने अफसर पिता की तरह कई सरकारी उच्च पदों पर नौकरी की। शिक्षा समाप्ति के तुरंत बाद सन 1858 में डिप्टी मजिस्ट्रेट के पद पर उनकी नियुक्ति हो गई थी। वो कुछ समय तक बंगाल सरकार के सचिव पद पर भी रहे। बंकिम चंद्र चटर्जी को राय बहादुर और CIE की उपाधियां भी प्राप्त हुईं। सन 1891 में वे सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुए। सरकारी नौकरी करते हुए ही उन्होंने 1857 का संग्राम भी देखा, जिसने उनके मन मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव डाला था।

सन 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी शासन प्रणाली में व्यापक परिवर्तन किए गए थे। शासन भार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में न रहकर महारानी विक्टोरिया के हाथों में आ गया था। सरकारी नौकरी में होने की वजह से बंकिम बाबू किसी सार्वजनिक आंदोलन में प्रत्यक्ष भागीदारी नहीं कर सकते थे। इस कारण उन्होंने साहित्य सृजन के जरिए स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति लोगों के भीतर जागृति पैदा करने का संकल्प लिया। उनके भीतर राष्ट्र गौरव की भावना आरंभ से ही बलवती थी। अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से उन्हें अत्यंत प्रेम था। बचपन से ही उन्हें संस्कृत साहित्य में विशेष रुचि थी। हालांकि उनका अंग्रेजी भाषा ज्ञान भी बहुत अच्छा था, लेकिन बांग्ला भाषा से उनका आत्मिक जुड़ाव था। अंग्रेजी भाषा से उनका लगाव तब समाप्त हो गया था जब अंग्रेजी के एक अध्यापक ने उन्हें बुरी तरह डांटकर नीचा दिखाया था। आजीविका के लिए उन्होंने सरकारी सेवा अवश्य की, परंतु राष्ट्र प्रेम और स्वभाषा प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा हुआ था। यही कारण है कि युवावस्था में उनके एक मित्र ने जब अंग्रेजी में उन्हें पत्र लिखा तो उन्होंने पत्र पढ़े बिना ही इस टिप्पणी के साथ उसे लौटा दिया कि अंग्रेजी न तो तुम्हारी मातृभाषा है और न ही मेरी। सरकारी सेवा में रहते हुए भी वे कभी अंग्रेजी भाषा के दबाव में नहीं आए। साहित्य जगत में उनका प्रवेश कविताओं के माध्यम से हुआ था। उन दिनों बांग्ला भाषा में गद्य और उपन्यास लेखन का चलन बहुत कम था। बंकिम बाबू ने इस दिशा में पथ प्रदर्शक का काम किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित कृति राजमोहन्स वाइफ अंग्रेजी में थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने बांग्ला भाषा में विपुल साहित्य रचा। सन 1865 में मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्होंने दुर्गेश नंदिनी नामक उपन्यास लिखा। इस ऐतिहासिक उपन्यास से ही साहित्य जगत में उनकी धाक जम गई। जिस कुशलता के साथ वे उपन्यास लिख रहे थे, उसी कौशल के साथ वे कविताएं भी रच रहे थे, जो लगातार प्रकाशित होती रहती थीं। आगे चलकर सन 1866 में कपाल कुंडला नामक उपन्यास की रचना उन्होंने की, जो बहुत चर्चित रही। इसके बाद तो अनेक रचनाएं उन्होंने की, मृणालिनी, विश्ववृक्ष, चंद्रशेखर, रजनी, देवी चौधुरानी आदि। बांग्ला साहित्य के जरिए उन्होंने भारतीय जनमानस तक गहरी पैठ बनाई तथा उनकी रचनाओं का अनुवाद दुनिया की कई भाषाओं में हुआ। इस तरह अनेक उपन्यासों की रचना कर बंकिम चंद्र चटर्जी साहित्य जगत में छा चुके थे। इन सबके बीच सन 1872 में उन्होंने एक मासिक पत्र का प्रकाशन भी आरंभ किया, जिसका नाम था बंग दर्शन। इस पत्र के जरिए वे गंभीर साहित्यिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे उठाया करते थे। गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर ने बंग दर्शन में लिखते हुए ही साहित्य जगत में प्रवेश किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी को वे अपना गुरु मानते थे। वे कहा करते थे कि बंकिम बांग्ला लेखकों के गुरु और बांग्ला पाठकों के मित्र हैं। सरकारी सेवा में रहते हुए बंकिम बाबू को कहीं न कहीं ये एहसास हो चुका था कि अंग्रेजी हुकूमत हिंदुस्तानियों पर राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक सभी तरह से अत्याचार कर रही है। उन्हें ये भी लगने लगा था कि ब्रिटिश सत्ता हमारी भारतीय संस्कृति की विवेचना गलत तरीके से कर उसे विश्व समुदाय के समक्ष रखती है। ये बात उन्हें लगातार कचोटती रहती थी, क्योंकि भारत गौरव सदा से उनकी आत्मा का संगीत था।

बंकिम बाबू का मानना था कि अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता के असल सत्व को वे अपने लेखन के माध्यम से दुनिया के समक्ष रख सकते हैं। उनके साहित्य सृजन के पीछे की मूल भावना भी यही थी। उनका सर्वाधिक चर्चित उपन्यास था आनंद मठ, जो सन 1882 में प्रकाशित हुआ। ये उपन्यास 1773 में उत्तर बंगाल में हुए सन्यासी विद्रोह पर केंद्रित था। इसी उपन्यास में शामिल किया गया था सुप्रसिद्ध गीत वंदे मातरम। एक तरफ अंग्रेजी सरकार की नौकरी और दूसरी तरफ देश के नव जागरण के लिए उच्च कोटि का साहित्य सृजन, ये कार्य तलवार की धार पर चलने जैसा था। लेकिन बंकिम बाबू डरे नहीं, रुके नहीं। उनकी साहित्य साधना अनवरत जारी रही। 1870 से 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोहों में गॉड सेव द क्वीन, इस गीत को गाना अनिवार्य कर दिया था। ब्रिटिश सत्ता के इस आदेश से बंकिम बाबू को ठेस पहुंची, जो उन दिनों डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्यरत थे। संभवतः इस गीत के विकल्प के तौर पर ही 7 नवंबर सन 1876 को उन्होंने संस्कृत और बांग्ला के मिश्रण से एक नए गीत की रचना की, जिसका शीर्षक था वंदे मातरम। शुरुआत में इसके केवल दो ही पद रचे गए, जो कि संस्कृत में थे, और इन दोनों ही पदों में मातृभूमि की वंदना थी। जब सन 1882 में उन्होंने आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास लिखा, तब इस गीत को उस उपन्यास में शामिल कर लिया, और इस तरह ये गीत अत्यंत लोकप्रिय हो गया। सन 1896 में कोलकाता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया, और इसके बाद तो ये गीत हर भारतीय का कंठहार बन गया। वंदे मातरम गीत क्रांतिकारियों के रगों में जोश बनकर दौड़ता था। वंदे मातरम के जयघोष ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिलाकर रख दी थी। उनका उपन्यास आनंद मठ प्रतिबंधित कर दिया गया, लेकिन वंदे मातरम जैसे आजादी का बीज मंत्र बन चुका था। और आज भी वंदे मातरम को न केवल हमारा राष्ट्रगीत होने का गौरव प्राप्त है, बल्कि अपनी रचना के इतने वर्षों बाद भी सन 2003 में बीबीसी वर्ल्ड सर्विस द्वारा आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण में वंदे मातरम गीत लोकप्रियता की दृष्टि से दूसरे स्थान पर रहा। कम ही कविताओं और गीतों के भाग्य में ऐसा यश आता है। आधुनिक बांग्ला साहित्य के प्रवर्तक बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन 8 अप्रैल सन 1894 को हुआ। एक ऐसे साहित्य सेवी, देश सेवी और सच्चे भारतीय के अवसान से समूचा देश शोक में डूब गया। उनकी रचनाएं आज भी लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपनी कलम की ताकत से स्वतंत्रता सेनानियों का जोश बढ़ाने का काम किया। भले ही वो कभी शारीरिक रूप से आजादी की लड़ाई में नहीं उतरे, लेकिन उनकी रचनाओं, उनके लेखों, उनकी कविताओं, उनके शब्दों ने जो राष्ट्र चेतना जगाई, वो अतुलनीय है। वंदे मातरम जैसे अमर गीत के रचयिता, कलम के ऐसे महान सिपाही को हमारा शत शत नमन।

0: इसका बचाव भी है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वराज संस्थान संचालनालय द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और श्रोताओं, अब वक्त है आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के विजेताओं के नाम जानने का। हमारा सवाल था कि गणेश दामोदर सावरकर का जन्म किस तारीख को हुआ था। इसका सही जवाब है 13 जून। यूं तो कई श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख भेजा है, लेकिन लकी ड्रॉ द्वारा चुने गए हमारे 4 भाग्यशाली विजेता हैं। निवाड़ी से सूर्यकांत त्रिपाठी, नासिक महाराष्ट्र से राजा लोधी, बालाघाट से दुर्गा देवी सतीजा और भोपाल से घनश्याम तिवारी। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र। और श्रोताओं, अब बारी है आज के सवाल की। आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हमारा आज का सवाल है, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। सवाल एक बार फिर सुन ले, वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन थे। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 777-908-908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 777-908-908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।